तुम मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव जे नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सा सीगारी रखाओ, अखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पार दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक।

गर्भ है परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई, रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा ताई, मांगे टूका तृप्त न पावे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, क्याल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गुर कीते बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपया नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पनवा, करन करा मन सोई आना दिसे कोई, ठाकुर मेरा सूढ़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे घर समीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम, पीवत अमर पय ने काम, तन मन शीतल अग्नि निवारी, अंधरू प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सब बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन मूठा, राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर कहो सद बलिहारी, ताज मारे पूरे सदगुर।

राय सो नर भोर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलटो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओ जन ले तरिया।

तन ते छुटकी अपनी तारी, प्रभु की आग्या लगी प्यारी। जो कुछ करे सो मन मेरा मीठा, ता यो अजद नैन डीठा। आम ओ जानी रे मेरी गई बलाए, बुझगी तिसे निवारी ममता। गुर पूरे लियो समझाए रखाओ, कर कृपा राख्यो गुर सरना। गुर पकराए हर के चरना, बीस बिसवे जामन ठहराने। गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो किन्नु हम तिसके दास। प्रा मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई। गल मिल चाले एक पाई, जा को गुर।

दहेद विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक पचारा अंध कमाए खड करमा आर आसन धोती भागट ग्रे पड़े नित पोथी माला फेरे मंगे बिभूत ए बिद कोई न तरे उमीत तो पंडित गुर शब्द कमाए त्रैगुण की ओस उत्तरी माए चतुर्वेद पूर्ण हरनाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला पंजवां।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

नेत्यलय आसन बेसुमार डिगना डोले कतहू न तावे गुर प्रसाद को इहो महल पावे प्रम पै मोह न माया जाल सुन।

सब छलै, हर हर नाम संग तेरा चलै, आराम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीरज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरे।

माया मोया टेढ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्त करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीतन करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह

प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कड़का रहता मेरा प्रभ रहाओ ताकी गई मन ओट बंधन ते होई चोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊच अपार सुमत सार जित हर सिमरी जे कर कृपा जिया पे दीजे सुख सहज आनंद हरनाओ नानक जपया गुर मिलनाओ राम कली मोहल्ला पंजवा सगल सियान पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों।

सागर तरयो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माघे, करण हार कहो किस अज जनाघे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमारे वसनाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे ब्यापिया तोहे, उदम करे गाडर ज्यो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक शल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सा समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुजन दुत्तर पेखत नाही। सगले का सुवारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिकृपा करे, सा संग सो पव जलता रहे। अमृत पीवो साध प्यारे, मुख उजल साते दरबारे। अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे। माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कै, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू सा बनसूद। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौ अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जग दीसे। ठगन हार अन ठगदा ठगे, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गत होए। राम कली मोहल्ला पंजवा, जो तुझ पावे सो थिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभ नाही आन बिया। रहाओ पुत कलतर लखमी दिसे, इन में किशु न संग लिया। दिखे ठकौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो मैं कृत पया। पूर्व कमाने छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अवरा, तिस न बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजिया संदूखन, दे बिना सी महा खया। जिने निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मोहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई। जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ। दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान। निर्मल मत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान। एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास। दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सु हेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, कोन दान इसनान ना संजम, सा संतिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अपमान पया, जिसका यो तान तान सो पर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंतकाल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, दे कुटाम्ब माया ग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी महला पहला, जत संजम साज दृढ़ाया, सा सदर हसीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृट समय सार, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुरलीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे, जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मैं सर्व, सर्व मैं एका, ए सब गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, तो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासया, तिर पवन जो दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली महला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार हो में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाह दवाजे, फड़कड़ जोत तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पांच तात मिल ऐरस दीवक, निर्मल ज्योत पारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदु, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीव तुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदु, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदु, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदु, जो जुत विचारी, माया मोह भवजल है अवधु, सब तरह कुलतारी, सब सूरज उचारे औदु, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदु, निरसे शब्द विचारी, आपे भगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली महला तीजा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंसा कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीन पवन जन लाया, ऐसी किंगरी बजाए।

मुक्त पाई, ज्ञान कागर डंडा जोगी, सिंगी सुरत बजाई, मान दृढ़ कर आसन बैस जोगी, ता तेरी कल्पना जाई, काया नगरी मैं मंगन चढ़े जोगी, ता ना पल्ले पाई, इत किंगरी ध्यान लागे जोगी, ना सच पल्ले पाई, इत किंगरी साधन आवे जोगी, अवमान विचों जाई, पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी, यो शरीर का डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे, इन वेद तिशना खंडी, हुकम बूझे तो जोगी कहिए, एक स्यों चित लाए, सहसा टूटे निर्मल होवे, जो जुगति पाए, नदरी आमदा सब कुछ बिन से हर से तीच लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एसो जी पाए, यो जोग ना होवे जोगी, जे कुटम छोड़ पर पवन करे, गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्राप्त लह, यो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, जिसमें रोग वड्डा तह नाम आया, अनेक जतन फे करे जोगी, रोग न जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनू मन नमसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग विखम है जोगी, जिसनू नदर करे सो पाए, अंतर बार एको वेखे, विचो परम चुकाए, विण वजाई किंगरी वाजे जोगी, सा किंगरी वजाए, कहे नानक मुक्त होवे जोगी, साचे रहे समाए, राम कली महला तीजा, भगत खजाना गुरमुख जाता, सगुर बूझ बुझाई, संतो गुरमुख दे वड्याई, रहाओ सच रहो सदा सहस उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आव छोड़ ना मिल लागी, ममता सब जलाई, जिते उपजे तिसते बिनसे, अंते नाम सकाई, सदा हजूर दूर न देखो, रचना जे नरचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सिंह लमलाई, सत संगत मै नाम निर्मोल, वडे भाग पाया जाई, परम ना भूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई, बिन नावे सा भूली फिरदी, बिरथा जन्म गवाई, जोगी जुत गवाई हंडे, पाखंड जोग ना पाई, शिव नगरी में आसन बैसे, गुर शब्दी जोग पाई, तातर बाजी शब्द निवारे, नाम से मन आई, यो शरीर सर्व रखे संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही, बिनावे बिन सजाई, ब्रह्मा बिशन महेश त्रै मूर्त, त्रै गुण परम भुलाई, गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटे, चौथे पद लिवलाई, पंडित पढ़े पढ़वाद वखाने, तिना बूझ ना पाई, बिखिया माते परम भुलाए, उपदेश कहे किस पाई, भव जना की उत्तम बाणी, जुग जुग रही समाई, बाणी लागे सो गद पाए, शब्दे सच समाई, काया नगरी शब्दे खोजे, नाम नवंग निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिनस उस्त कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अधिष्ट लगाई, अधिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मलाई, हाँ गुर सराई सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक एक कहे बेनंती, नाव गत पद पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रखाओ, हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्याहो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन नमसाई, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई, पवित्र पावन हे जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नावे होर पूज न होई, परम पुली लोकाई, गुरमुख आप शाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन नमसाई, पाणे ते सब सु पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आप ना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जमनी छोड़े, ले जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप छाणे, गत मित तिन ही पाई, यो मनुआ सुन समाध लगावे, जो तीजोत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत मेलाई, गुरमंग गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई, पए पंजन अद पाप नखंजन, मेरा प्रभ अंत सकाई, सब कुछ आपे आप वरत, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा, हम कुचल कुचील अत अभमानी, मिल शब्दे मेल उतारी,
संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम से आकट अंतर, करते आप सवारी रघाव। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी, एक पेख करे फिर अपमानी, दिन जुए बाजी हारी। एक अंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उर तारी, अंदन राते सहजे माते, है देहो में मारी। भय बिन भगत न होई कभी, है पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी। आपे आप कराए करता, आपे बख्श पंडारी, इस क्या गुणा का अंत न पाया, हों गामा शब्द विचारी। हर जीव जपी हर जीव सालाही, विचो आप निवारी, नाम पदार्थ गुर ते पाया, अखुट सते पंडारी। अपने आप भगता नू आपे तुठा, अपनी कृपा कर कलतारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गामन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश वे तुसका, आखण बिखम विचारी, शब्द लगे सही जन निस्तरे, भोजल पार उतारी। बिन घर साचे को पार न पावे, बूझे को विचारी, जो तुर लिखया सो ही पाया, मिल हार शब्द सवारी। ताया कंचन शब्द राती, साचे नाए प्यारी, ताया अमृत रही पर पूरे, पाएगे शब्द विचारी। जो प्र खोजे सही पावे, और फूट मुए अंकारी, बादी बिन से सेव सेवे, गुर के हेत प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हमें तिस नाम मारी, सगुर दाता तने पिछाता, जिसनु कृपा तुम्हारी। सतगुर ना सेव है माया लागे, डूब मुए अंकारी, जिचर अंदर सास चित्र सेवा की जय। जाए मिल गए राम मुरारी, अन दिन जाग तरह दिन राती, आपने प्रे प्रीत प्यारी, तन मनवारी वार कुमाई, अपने गुर बिट्टो बलिहारी। माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आप जगाए सही जागे, गुर के शब्द विचारी। नानक सही मुए जे नाम ना चेत, फल जीवे विचारी, राम करी मुहलाती जा, नाम खजाना गुर ते पाया, तृप्त रहे आगाई। संतो गुरमुख मुक्त गल पाई, एक नाम से आकट अंतर, पूरे की वड्याई रघाव। आपे करता आपे भुगता, देंदा रिजक सवाई, जो उस करना सो करया, अवर न करना जाई। आपे साजे सिर चुपाए, सिर सिर तंदे लाई, इस सिरे भो ता सुख पाव, सतगुर मेल मलाई। अपना आप आप उपाय, अलख न लखना जाई, आपे मार जी वाले आपे, जिसनु तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, छेबड़ पागी जिनी एक हो जाता, सत्ते रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुस उपाए अंतर, आपे परम फुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साल आया, सगुर बूझ बुझाई। एक ना नाव आप भुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा साला है हो संतो, जिदी वड्डी वडे आई। जिसमें अवर न कोई राजा, कर्त पावस बंत मनाई, न्यावत से का है सा साचा, विरले हु मनाई। इसनु प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बंत बनाई, सगुर पेटे सोजन सीजे, जिस हृदय नाम साई। सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्मात, मेरा प्रभ रविया सर्वथाई। राम कली महला पंजवा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद किन्ही किया प्रवृत्त पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल पोयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे, आ ना जा ना वेसा रहाओ, किन्ही ग्रो त बणखण पाया, किन्ही मोन अधू सदाया, होई कहतो आनन पहोती, मोहे दीन हर हर ओट लीती, किन्ही कहया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पौन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया, किन्ही कहया मैं कुले बड़े आई, किन्ही कहया बा बो पाई, कोई कह मैं तरे पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर चाया, किन्ही सिद्ध बो चेटक लाए, किन्ही पीघ बो थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बो खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहस्यो मंडत, कोई करे आचार सुपरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोधे, बिन नावे ओ मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साह संग पाया, बूझी तिसना महा सीत लाया।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਤੂ ਕਰਿਆ, ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦਿਹੋਰਾ ਕਰਿਆ, ਉਦ ਜੋਤ ਲੈ ਸੁਰਤ ਪਰੀਖਿਆ, ਮਾਦ ਗਰਮ ਮੈਂ ਜਿੰਤੂ ਰਾਖਿਆ, ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਜਨਾ, ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ ਰਹਾਓ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਬਾਵ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਪ੍ਰਾਤ ਪੁਤਹਾਰੀ,

करभूत माद गर्भ संकट ते शूड जाका नाम सिमरत पो जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन गार दयाल जद का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देव प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बोचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार ज्यो पावक संग सीत को नास ऐसे प्राशित संत संग बिनास ज्यो साबन पापर उजल होत नाम जबत ता प्रम पखोत ज्यो चक्री सूरज की आस ज्यो चात्रक बूंद की प्यास ज्यो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जनमने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पैता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेखेओ सब विस्मात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम पधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी तिस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आप पालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाप सब नस हरस्यों दे मलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सखाई रहाओ सगल दूर का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पदत पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरत स्वामी नांग तिसरनाई बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कू बिखिया ते काढ़ो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बहाड़ कथो ना ताई नाम रसायन यो मनाराता अमृत पी तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लव से आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम धन पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गए सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं गुर साते लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिगे लड़लाई साय धर्म का बेड़ा बंधया पवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहया सुमाई भगत दान भगतां को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेप निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत पहनना

से महाअहंकारी साधु संगत यो फल पाया, एक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर ना कोई हीना, ता प्रगटी जो तुम्हारी, तो सुमरथ अकथ अगोचर रव्या एक मुरारी, कीमत कौन करे तेरी करते, प्रभ अंत न पारा वारी, नाम दान नानक वडियाई, तेरिया संत जना रे नारी, राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माय, सदगुरु मैं पाया, सदगुर ता पाया सहज सेती, मरवजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया शब्द तंगा भो हरि केरा, मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ, सदगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब सारना अंगीकार ओ करे तेरा, कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला सुमरा।

करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सदा तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिदियां ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर के लागे कहे नानक तहे सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो, क्या करे वेचारिया तुझ बास समर्थ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया केस नौ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया।

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर हर ताए मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मेरे संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुन चरना ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भक्त वखानई जी जंत सब तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना में जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछानई।

आठ पैर अपना प्रभु सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रोतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रलगा मीठा पाना, सब इश कुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिभुवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिरसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभु दीनानाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृह स्थान तिसका तन जोबन तन माल जियो, सा सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक तदा उत्तरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नानक पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहा समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, राणा झुंझुनड़ा गाओ सखी हरेक त्याव हो, सतगुर तुम सेव सखी मन चिंदेड़ा फल पाव हो। राम कली महला पंजवा रुत्ती श्लोक एक ओंकार।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्से सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन तीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोस पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहया अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देव आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृत सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक सुमाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठ गौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते एवता फिर पछताई एक सरेवे ता गतमित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे तिलोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म ज्योत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारण हारा इस एक का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द विचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कसे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीस देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीसियों मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानव अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा ना पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए आस देख निवे जिह दोए आद होए तामुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एको सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कर थाप आप अगोचर तंदे लोई जुग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना विहुना मुक्त के होई।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

तनसो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए तनसो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाओ जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारे जाओ तिन की तूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए जो रत्ते रंग गोविंद के हो तिन बलिहारे जाओ आखा बिरथा जी की हर सज्जन मिल हो राय गुरपूरे मेल आया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अंत न काहू जाए महला पंजवां तन सो वेला कड़ी तन तन मूर्त पलसार तन सो दिनस संजोगड़।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा।

ते करे सुध देख, नानक जिस तुरमस्त हो वे लिखया तिस सतगुर नाल सुनेहा। अमृत बाणी सतगुर पूरे की, जिस किरपाल होवे तिस हृदय वसेहा। आमन जाना तिसका कटी है, सदा सदा सुख होहा पौड़ी। जो तु पाणा जंत सो तुद बुझई, जो तु पाणा जंत तो दरगे सिजई। जिसनु तेरी नदर होमे तिस गई, जिसनु तु संतुष्ट काल माल तिस खई। जिसके स्वामी वल निरपो सो पई, जिसनु तु किरपाल सच्चा सो थई। जिसनु तेरी माया ना पोहे अगनई, तिसनु सदा दयाल जिन गुरते मत लई। सलोक महला पंजवां, कर किरपा किरपाल आपे बख्श लए। सदा सदा जपी तेरा नाम, सतगुर पाए पए। मन तन अंतर वस दुखा नास होए, हथ दे आप रख व्यापे पौ ना कोय। गुण गावां दिन रहन एते कम लाए, संत जना के संग होमे रोग जाए। सर्ब निरंतर खसम एको राव रहया, गुर प्रसादी सच सचो सच लहया। दया करो दयाल अपनी सिफत देहो, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एह। महला पंजवा, एको जपिए मने माहे, एक सकी सरणाए। एक स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाहीं जाए। एको दाता मंगिए सब कुछ पल्ले पाए, मन तन सास गिरास प्रभ इको एक त्याए। अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए। वड़

गाओ, मन तन हृदय सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

मुद्रा मदक सहे तुन लागी सुगमन पुचनहारी रे तीर्थ वर्त नेम सुसंजम रस गहने देओ रे तुरत प्याल सुधारस अमृत यो महारस पियो रे निजर तार चोवे तन निर्मल ए रस मनुआ रातो रे कहे कबीर सगले मद छूछे एह महारस सचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन तारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा हौदू मेरा मन मतवारा उनमा चिड़ा मद रस चाखिया तेर पवन पया उजियारा अरहाओ दुइ पर जोर साई पाठी पियो महारस पारी ताम क्रोध किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गमत सदगुर ते सुध पाई दास कबीर तास बंद माता उचकना कब हो जाई तू मेरो मेर परबत स्वामी ओढ़ गही मैं तेरी।

नीज कर भोजन हटे कर्म कर उधर परे चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीप ले कूप परे तू ब्राह्मण में काशी कुजुलह मोहे तो बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम के उबरे वेद परोसे पांडे डूब मरे करवर एक अनंत डार साखा ओप पत्र रस पैया

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ, बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन ये प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपन तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पै।

ले गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सदकीनो सूर गेरास जाब कुंभक पर।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरसे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परसे, देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे नानासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गहे, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के, नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर घर राम रंगे, हर घर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रगाओ, जन्म जन्म के पूर चूक हम अबाए प्रसरण अगे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हमरा खो वड़ पाप के, तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभु की ये पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रवरा की पैज जानगे, जो तुमरे गुण गावे स्वामी हम बाल बाल बाल तिनगे, पावन पावन पितर सब की ये जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभु कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे, जन नान को दया प्रवतार हो हम सेवो तुम जन पगे, नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रतारी मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बो बंदे हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने, तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रावड ने, नट मोहल्ला चौथा मेरे मान कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी लग सतगुर हर जपने रगाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने, हे प्रपंच किया प्रस्वामी साब जग जीवन जुगने, ज्यों सलल है सरल उठे बहुलहरी मिल सलल है सलल।

क्या भावे मन प्यास बौद्ध दर्शावे रहाव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे कृपा करज पुरख विधाते सो सदा सदा तुल त्यावे कवन जोग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी री जावे सोई जान सोई निज भगता ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमक न प्राविसरावे संत संग लग क्यों सुख पायो हर गुण सदगी गावे देखो अचरज महा मंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लायो

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया, तुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुमगी यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे पारस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत से मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बो प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही और सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निहतारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे, जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो, सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन विसे, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है, हलक्यो सबे बिगारे, मेरे ठाकुर के दीवान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया हर राखली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सत संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले घर प्रवजाता गुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी घर प्रापाया तिन पूछो घर की बाता पाए लगो निद करो जुदरिया हर मिलो कर्म विदाता लिलाड लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता हर प्र आई मिले सुख पाया सब केलभ पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया तिनकी उत्तम बाता तिनकी पंक पाये वडभागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा मोहल्ला चौथा सब सिद्ध साधक मुनजना मन पावनी घर त्यायो अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो हर रायो हरियान मेल्यो सदगुरु खिन बंद मुक्त करायो प्रा मस्त के तुर लिखया गुरमती घर लिवलायो पंच शब्द दर गए बाजया हर मिलो मंगल गायो पतत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जो नी गालिये ज्यो डोन जले गलायो मत दे हर अगम ठाकुर गुर चरण मन मैं लायो हर राम नाम में रहो लागो जन नानक नाम समायो माली गौड़ा मोहल्ला चौथा मेरा मन राम नाम रस लागा कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो परम पो भागा रगाओ पय पाए भगत लागो मेरा हीरा मन सोयो गुरमत जागा केल बिख खीन पय सांत आई हर उतारियो वडभागा मान मुख रंग कुसुम्भ है कछुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मैं बिनस जाए परताप दंड तरमरा एका लागा सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी जो रंग मजीठ बो लागा ताया कापर चीर बो फारे हर रंग न लहे सुभागा हर चारो रंग मिले गुर शोभा हर रंग चलू ले रंगा।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवलादास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरि, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नी।

कियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोहताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप अरे मन मेरे तू ताको जाप सा संगत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संग मन तन

मीर खाए तापी सन जाओ पखा फेरी पैर मलोवा जब तरह तेरा नाओ लून खरामी नान कलाला बगसे तुद वडियाई आद जुगाद दया पद दाता तुद बिन मुक्त न पाई मारू मोहल्ला पहला कोई आखे भूतना ओ कहे बेताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा पया देवाना साका नानक बौराना हों हर बिन अवर न जाना रखाओ तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए एकी साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए तौ देवाना जानिए या एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए तौ देवाना जानिए या साहेब तरे प्यार मंदा जाने आप को अवर पला संसार मारू मोहल्ला पहला इओ

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रगाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाणा सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

फिर हाथ कताऊ ना पाए जोनी सब पवाईन बिस्ता माए समाए वड़ पागी गुर पाया पूर्व लिख या माए अनदन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावे तय दे। मारू महला तीजा पिछले

आद हर हर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सुमाली हर हर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिखम है पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे प्रस

असाध रोग उपजो तन पीतर करत न काहू टारियो प्रा बिसत मह दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए उस

निकुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थ छोड़ न कत हो जाए, हो नानक सुख पाया तृप्त रहे आगाए। मारू महल्ला पंजवां, फूटो आंडा परम का मने पयो परगास, काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास। आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रघाव। जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार, जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने तरमा। सच थान सच बैठका सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महल्ला पंजवां, वेद पुकारे मुगते पंडित का मामन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती हृदय कल्पन गाठा, होए उदासी गिरता चलेओ छुटके नाही नाठा। जी की कह पै बात कहा, आ मुक्त मोको प्रामेले ऐसो कहां लहा रहाओ। तपसी करके देही सादी मनुआ दैद स्थाना, ब्रह्मचार ब्रह्म तकीना हृदय पया गुमाना। सन्यासी होए के तीर्थ प्रमेयो उसमें क्रोध बिगाना।

गर्भ मैं जिन प्रद पारिया, जियो पिंड दे सा सवारिया, तोई बधाता खिन खिन जपी है, जिस सिमरत अवगुण सब टकी है, चरण कमल उर अंतर धारहो, बिखिया बनते जियो उधारहो, करण पला मिटे बिल लाटा, जब गोविंद परम पौ फाटा, साध संग विरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए, आराम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मितया वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी।

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

तन चतर सुंदर मन नांग ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोबत जागत गुरमंत्र रिचतार चरण सारण पज संग साधु।

सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवां पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कण साथ करण कारण चित न आवे देकर रखे हाथ रखाओ साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पास करो कृपा मुराद माधो सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संयोग वियोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रहाओ। जम को डांड परे सिरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता होत आपके पुछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बौ कणा, प्रम थाके पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

गुरपूरे सावास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लय गुर को बर जाइए लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी सचे बैसन उठना सच भोजन भाख्या चित सचे वितो सचा साचा रह चाख्या साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाख्या मनमुख आलस घणो फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी अनहत लाला बिदया प्रभगेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी जिन्नी नाम सारिया

दुख दर्द कलेश बिन सहे, जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े, बिखना पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे, अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन, ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधक देव मुंजा, वेद करे उचार, तेमर स्वामी सुख सहज पुंच, नहीं अंत पारा वार, अनक प्राशित मिटे खिनम है, हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन, ओड़दान इसनान, बार बुद्ध सुध प्राण सर्वस, संतना की रास,

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन

चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन परजीव अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना।

परवाहे, आप उपाए दान सुमाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलया सहज रजाई हे। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो कुछ करे सो आपे आपे। भगत पाव गुर की मद पूरी, अणगल शब्द लखाई हे। एक नंगे भूखे पवे पवाए, एक हड़कर मरे न कीमत पाए। गात अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई हे। एक तीर्थ नाव है अन्न न खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है। राम ना बिन मुक्त न होई, किद बिद पार लंघाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मनमुख राम ना जपे अवाई। पाज पाज बूढ़े कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच समावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू महला पहला, आपे करता पुरख बेदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सदगुरे आपे सेवक। आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत अहन सलाहा। गुर संगत ए वडाई है, जो जो संत पले प्रव तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जाग तरह है न सूते दिस है। संगत कुल तारे साज परिस है, कालमल मैल नहीं ते निर्मल। ओए रह भगत लिवलाई हे, बूझो हर जन सदगुर बाणी। यो जोवन सास गए दे पुराणी, आज काल मर जाएगे प्राणी। हर जप जप हृदय ते आई है, छोडो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाड़ा, शायद कूड़ पते मन होमे। दो मार्ग पते पचाई है, छोड्यो निंदा तात पराई। पड़ पड़ दजे सातन आई, मेल स संगत नाम सलाह। आत्मराम सखाई है, छोडो काम क्रोध बुरियाई। होमे तंद छोडो लंपटाई, सदगुर शरण परो ता उबरो। क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बेमल नदी अग्न बिख चेला। तिथे अवर न कोई जियो अकेला, पाड़ पड़ अग्न सागर दे लहरी। पड़ दजे मन मुक्ताई है, गुर पे मुक्त दान दे पाने। जिन पाया सोई बिद जाने, जिन पाया तिन पूछो पाई। सुख सदगुर सेव कमाई है, गुर बिन उर्ज मरे बेकारा। जम सिर मारे करे खुवारा, बादे मुक्त नहीं नर निंदक। डूबे निंद पराई है, बोलो साज पछाणो अंदर। दूर नहीं देखो कर नंदर, बिघन नहीं गुरमुख तर तारी। यो पवजल पार लंघाई है, देही अंदर नाम निवासी। आपे करता है अबनासी, ना जीव मरे न मारिया जाई। कर देखे सब दर जाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा। ओ आपे तख्त बहे सत्यारा, शायद कूड़े बंद पवाई है। मार जन्म है आई जाई है, गुर के सेवक सदगुर प्यारे। ओए बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तात लह अंतरगत जान है। सत संगत साच वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे। संगत मुद सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला। जिन गुरमुख कर लिवलाई है, मारू महला पहला। एते जुग वरते गोबार है, ताड़ी लाई अपर अपार। धुंदू काल निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है। जो शती तने वरताए, जुत पाणा तिवे चलाए। तिसे शरीक न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है। गोते बूझो जुग चत आरे, घड़कर वरते उदर मझारे। जो जो एका एकी वर्त है, कोई बूझे गुर विचारा है। बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया। आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है। गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी।
ساس ساس خج نام سمالے انتر ادھر مجھارا ہے چار پدارتھ لے جگ آیا شیو سکتی کر واسطہ پایا ایک سارے تاں پڑ سارے

गुण में गुणी समाया, ते जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज सुमा।

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, इस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मनराता, सेमर सेमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा।

कर बारी, एक भूखे एक तृप्त अघाए, सबसे तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगत संगराचा, आपे गुप्त आपे गए प्रगट, अपना आप सारणा। सदा सदा सद हो मनहारा, ऊंचा अगम अथाओ अपारा, ऊने परे परे पर ऊने, ये चलत स्वामी के कारणा। मुगसाला ही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगम अथाहा, करनी सुन सुन मन तन हरिया, मेरे साहेब सगल उदाहरणा। कर कर वेखे कीता अपना, जी जंत सोई है जपना, अपनी कुदरत आपे जाने, नदरी नदर निहालना। संसबाजे वैसे प्रापासे, आनंद मंगल हर चलत तुमासे, गुण गावे अनखद तुन बाणी, तै नानक दा चितारना। आमन जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखे खेल अपारा, आ उपाय उपामनहारा, अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी, दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती, मेरे स्वामी अगम अपारना। तुद बिन दूजे के सालाही, एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझन पए निहाला, ए भगतां की कालना। गुर उपदेश जप के मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा, गुर उपदेश टुटे सा बंधन, यो परम मोह पर जालना। जय राखे सोई सुख थाना, फे जे होए सोई फल माना, बिन से बैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। दर चूके बिन से अंधियारे, प्रड पए प्रापुरख निरारे, आव छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ कालना। ऐसा कोवड पागी आया, आड़ पैर इन खदम त्याया, ते जन के संग तरे सब कोई, तो परवार सुधारना। ए बख्शीस खदम ते पावा, आड़ पैर कर जोड़ त्यावा, नाम जपी नाम सहज समावा, नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा, सूर देखना फूल गवारा, मिशन मुहारा चूड पसारा, जग में कोई रहन न पाए, नेचर एक नारायणा। गुरपूरे की पौसरनाई, मोसूसा परम मटाई, एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसे वो देवा, सगल पत जा की कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, तो गुरपूरे ते पायना। होर द्वारा कोई न सूझे, तिर पवन तावे ता किसु न बूझे, सतगुर साओ भंडार नाम जिस, यो रतन तसे ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता, तुर नर देव न पावे मीता, सत पुरख सतगुर परमेसर, जे भेड़त पार परायणा। पार जाद लोड़े मन प्यारे, काम तेन सोही दरबारे, तृप्त संतोष सेवा गुरपूरे, नाम कमाए रसायणा। गुर कै शब्द मरे पंच धातु, पए पार ब्रह्म होवे निर्मला तू, पार जा फेटे गुरपूरा, ता पारस प्रसिद खायना। कई बैकुंठ नाही लवे लागे, मुक्त बपड़ी पी गया नी त्यागे, एक अंकार स गुर ते पाई है, हों बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनु लाए लए सो सेवक, जिस बड़ पाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने, तुष मात तू सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर, जिस सिमरत मन सीतलायना। जाकी सोए सुनी मन जीवे।

तर्हि केश गोवर्धनधारि मुरली मनोहर हार रंगा मोहन माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असुर संहारे जगजीवन अविनाशी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण।

इनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, होंबलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समर्थ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कम हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद वकाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी, ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता, अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया, तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़ कड़ वसे सबन के नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया, नानक दास सदा शरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने, ताकि कीमत कहन न जाई, जड़ कद ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दूग सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए, सोई हुए जे करते पावे, कह के आवनावना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना। तेरी कीमत कहन न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए, तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए, गुण ते गुण मिल पाईए, ये सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए। वणज न लीजे हाट, नानक पूरा तोल है, कहो ना होवे काट। महला चौथा, ना विहूने परम से, आवे जावे नीत, एक बंद एक टीलिया, एक सुखी हर प्रीत। नानक सच्चा मन लय, सच करनी सच रीत, पौड़ी गुरते ज्ञान पाया, अद खड़ग तरारा, दूजा प्रमगढ़ कटिया, मोलोभ अहंकारा। हर का नाम मन वसया, गुर शब्द विचारा, सच संजम मत कूतमा, हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा, सच सृजनहारा। सलोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिए पाई, सबदे करे प्यार, सत्संग सो मिलदो रहे, सच्चे तरे प्यार। विचो मल कटे अपनी, कुला का करे उधार, गुणा की रास संग्रह, अवगुण कढे विडार। नानक मिलिया सो जानिए, गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा, सागर देखो डर मरो, पै तेरे डर नाहे, गुर के सब संतो किया,
ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਤਾਨ ਆਏ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੜ ਬੋਏ ਥੇ ਚਾਲ ਸੋ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰੀ ਦੇ, ਠਾਕ ਨਾ ਸੱਚੇ ਬੋਏ ਥੇ ਜੇ ਗੁਰ ਤੀਰਕ ਦੇ, ਤੇ ਦਰ ਜਾਏ ਉਤਾਰੀਆ ਗੁਰ ਦਿਸੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ ਮਾਨ ਪੌੜੀ, ਨੇ ਕੰਟਕ ਰਾਜ ਪੁੰਚ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਾਪਣਾ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ,

न कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासीए।

सोधर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोध सो लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जीव अहंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे, अहंकार मोए से

पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तंबोल रस बिन पसे हावरा शार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हरि आग्या होए वेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा विष्ण महेश त्रैगुण विस्तारिया नौखण पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जंत्यो पाए अंतर कल तारिया तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया तू जाने सबिद आप गुरमुख निस्तारिया डखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोया कद पस्ती जानी तोह महला पंजवा दुर्जन तू जल पाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हब्बो दुख।

पंडिया कवन कुमत तुम लागे, बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों, आराम ना जपो अपागे रखाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खारे चंदन जस पार, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा।

ब्यास कहत है सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे रम छूटो नाए ता बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार, सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मे राम।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरै रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, तां पर तुही ठरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, तै रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तल ताके, हर का हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रखाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी। सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करम्मा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहम्मा देसो तू पल। हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा। बाबी गा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सा तन सबरस चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी, जा प्रा पाणी सा सुहागण नारे। नव कर थाप मैल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने, प्रीतम अपने, मन तन रव तरवन्ने, कड़ी ना बिसरे। क्यों कड़ी बिसारी हो बलिहारी, हौ जीवा गुण गाए, ना कोई मेरा हो किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओड़ गई हर चरण निवासे, पए पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुरसबदी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मिले सहज सुपाए, हर स्यो प्रीत बनी। हर मंदर आवे जा प्रा पावे, तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण, पौ क्यों कंत वसारी। उन कनशाए बरस सुपाए, मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे। चेत बसंत फला पावर सुहावड़े, बन फूले मंज बार मैं फिर कर बहौड़े। फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे, बिरे बरो तन छीजे। कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे। पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए। वैसाख भला साखा वेश करे, तन देखे हर द्वार आप हो दया करे। कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो, कीमत कौन करे तुत पावा। देख दिखावे ठोलो, दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना। माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार सातन बिनो करे। तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रपावा। साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा। निमाणी नितानी हर बिन क्यों पावे सुख महली, नानक जिड़ जाने थी जैसी। कर्म मिले गुण गैली,

नर शब्द मिलाए तिन प्रव कारण किया तुखारी मुहला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक सूर करम्मा सदगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच समालिया अहे निस देख बिचारिया धावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोध पई गुर

अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे विण नावे को संग न साथी आवे जाए कनेरी नानक लहा लय कर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश।

नित देवे चढ़े सुआया अपरंपरे आपे था पुथापे इस पावे सो होवे नानक हीरा हीरे विद्या गुण कै हार परोवे गुण गुणे समान मस्तक नाम निशानु तसा समाया चूका आमन जानु सच साच पछा।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

गुरवाग सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति जोत मिल जो तस्वाणी, हर कृपा कर धरणी तरा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाहा, तू कट कट पूर रहया, तू अलख अपेव अगम, गुर सतगुर बचन लहया, अन तन तेजन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, बवेक बुद्ध विचार गुरमुख।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित मैं खो।

कछ व्यापे संत संग व्यवहार रखाओ कर अनुग्रह आप राखियो नहीं उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै।

कठिया मटिया संग न कछ ले जाए रखाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संग माए, मैं हट लग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए। वय सुत वय बित वय पुर पाटन बौर न देखे आए, कहे त कबीर

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, पानी हर जापो जन्म गयो, ताच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अध पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी।

ब्रह्म बिंदते तब ओपत होई माटी एक सगल संसारा बोध पांडे तड़े कुमारा पांच तत् मिल देही का आकारा काटवद को करे बिचारा कहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृह पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे नामूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुरु मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत्।

होए, निकर वस्ते सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माते पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन से जन प्रवान।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एक ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो

से पूरे वड़भागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छै सोई फल पावै, गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा, दुख जमे दुख मरे, दुख जकार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै, बिस्ता महे समाए। त्रिग त्रिग मनमुख जन्म गो।

ना जाई परया समाई नानक दास हर की सरणाई। अराग भैरो महला पंजवा चौपदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रशोड़ करे अनसेवा तुम बिखिया रसमाता। अरे मन मेरे तू गोविंद भाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चितविए इत बिगर सकाज रखाओ ठाकुर छोड़दासी को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करे ते निंदे निगुरे पशु सुमाना जियो पिंड तान तान सब प्रभ का सागत कहते मेरा अंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जाब तब सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत तराया। भैरों महला पंजवां

बिन श्रवणा कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेख, ना बिना नर कही न लेख, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, ना बिना साग सड़गी चूरे।

रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मन गहे, अंग भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण गारी, खिन में ऊने सुबर भरिया, खिन में सूके कीने हरिया, खिन में निथावे को दीनो थान, खिन में निमाने को दीनो मान, सब में एक रहा पर पूरा, सो जापे जिस सतगुर पूरा।

हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकि रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आलक आवे बेसवा भजत इस नह शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे अराच रहया बिरथा व्यवहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ जो जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन नमसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो निरपाई तार लए सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर इहो निदान सेजन दरगे पावे मान सोग सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न तावे ताओ जुगे जुगंतर इहो तत्सार हर सिमरन साचा बीचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जन सब तेरे हाथ नानक के प्रसल की साथ भैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रवे हर नाम।

सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नगार।

अंतरजामी साचा सोए, तेरी टेक तेरा मनतान, ईगा ऊहा तू दीबान, तेरी टेक तेरा परवासा, सगल त्याव है प्रभु गुणतासा, जब जब अंध करे तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणतासा, भैरो महला पंजवां, परस में छोड़ी प्राई निंदा, उतर गई सा मन की चिंदा, लो मोसव की नो दूर, परम वैष्णो प्रापे खजूर, ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ, अंग बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साजना के संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्वमय पूर्ण भगवान, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, कर कृपा जिस राखे आप, तोई भगत जपे नाम जाप, मन प्रगास गुर ते मत लई, कहो नानकता की पूरी पई, भैरो महला पनवा, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, सा संग पागे वड़पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तर्म हो करता, बंधन काटनहार मन वस, तौ सुख पावे निज कर बस, सब जाजक प्रादे मनगार, गुण निदान बेंत अपार, जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहु नानक तुमरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई, भैरो महला पंजवां, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कार कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेड़त मन पया आनंद, सर्वन दान नाम भगवंत, जन मरण की मिटी जमत्रास, साध संगत हूंद कवन विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो महला पनवा, तब ते ऊंचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जे सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बसे मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए, रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा तन साची वड्याई,

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार संभाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक कहे मन इओ पुरखार्थ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ भैरो महला पंजवां पय को पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याज मिट्टी त्रिगुण की दास के होए पूर्ण।

सासंग मिटिया अब महान ऐसे संत पेटे वड़पागी नानक तिनके सद कुर्बान। भैरो महला पंजवा पंच मजमी जो पंच न राखे मिथ्या रसना ने कुड़ पाखे।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

ओए अंगम प्रिंग माया मैं खापे, माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जीते ते डकाई, अरहाओ पंखी मृग माया मैं राते, साकर माखी अर्ग

कंत अर्ध उर्ध मुगला गोकास ठुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

विद्या कोट सबे गुण कहे तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे बावन कोट जाके रुमावली रामन सयना जयते शली सहज कोट भो करत पुराण दुर्योधन का मथिया मान कंदर्व कोट जाके लवे ना तरे अंतर अंतर मनसा हरे कहे कबीर सुन सार्ग पान दे अपय पद मांगो दान भैरो बाणी नाम दियो जियो की कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो न

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

पाल गंग जमन जो उल्टी बहे तो नामा अगर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल।

नाम दियो सब रहया समाए, मिल हिंदू सब नामे पह जाए, जो अब की बार न जीवे गाए, ता नाम देव का पतिया जाए, नामे की कीर्त रही संसार, भगत जनाले उदरिया पार, सगल कलेश

पढ़िए, पंडित करो विचारो, स्वामी पंडता तुम देहो मती, किन विद पाओ प्राण पति रघाओ, भीतर अगन बनस्पत मौली, सागर पंडय पाया, चंद सूरज दुए करही पीतर, ऐसा ज्ञान न पाया, आराम रवंता जानिए, एक माई भोग करे, ताके लखन जानिए, खिमा तन संग्रेह, कया सुने ना खाया मन है,

तेरा प्रभ मोलिया सद बसंत इओ मन मोलिया गाए गुण गोबिंद रहाओ गुर पूछो तुम करो विचार ता पुर साचे लगे प्यार आप छोड़ हुए दास्त पाए तो जग जीवन वसे मन आए पद करे।

पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए,

प्रभु देहे साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रा तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट काट काट रया समाय जाके भगत आनंदमय जाके भगत को नाही खै जाके भगत को नाही पै जाके भगत को सदा जय कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रवरयो समाय नानक जाचे एक दान कर कृपा मुझे देहो नाम बसंत मोहल्ला पंजवा मिल पानी ज्यों हरे बूट साध संगत त्यों होमे शूट जैसी दासे तीर मीर तैसे उदाहरण।

साधु संगत गुरे बताई, ऊहां जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुरमिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जे सिमरत

दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभु दयाल अपने दास को नदर निहाल कार कृपा मुझे देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं।

दुष्ट दूत सा प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देद संतर रहे ताए किरत ओ ना का मिटसनाहे कोई अपना बीजिया आप खाहे जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए नारक जीवे हर चरण ते आए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रव करी माया सर मनोरथ पूर्ण काम जब जीवे नानक राम नाम तारुत सुहावी जिद हर चित आवे बिन सदगुर दिसे बिन लांती सागत फिर आवे जावे रगाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपय पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो लिवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रया गुर मिल नानक हर हर कहया हरिट सिद्ध।

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे आप करे आप करने हारे, तर कृपा नानक उधारे बसंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख फूल फूल फूले, अंग त्याग त्यागे चरण कमल पागे, तो मिलो प्रस भागे हर चेत मन मेरे, अरहाओ सगन बाज कूले, एक रह सूक कठूले बसंत रुत आई, प्रफूलता रहे अब करू आयो रे, एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही

हर हरे बसंत महला पंजवा कार दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हुए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए इन विद पासा ढालो वीर गुरमुख नाम जपो दिन राती अंत काल नै लागे पीर रगाओ कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल घर प्यारी उठ स्नान करो प्रभाते सोए घर आराधे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सदगुर सुख सहज सेती कर जाते हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नान गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया बसंत महला पंजवा हिंडोल तेरी कुदरत तू है जान है और ना दूजा जान है जिसनू कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुदे पछ

तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आपना सूझे। परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी। मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ ओपत परलो प्रवते होवे। ए बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते। काल में सुहिए से गनी आवर उपाओ न को सूझे। नानक तरिगे गुर बचनी एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। राग बसंत हिंडोल महला नावा साधु इव तन मिथिया जानो। या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो। रघाव इव जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो। संग तिहारे

दुख सुख बांधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईट मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मह गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने।

ते पाईऐ ए रुत सुहाई वाण त्रैण तिरपवन मौलिया अमृत फल पाई मेरे साधु सुख उपजे लथी सब शाही नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ ना ताई पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण जपाय विज दियो खड़ोआ रोग सोग सा मिट गए नित नवा नरोआ दिन रैन नाम ध्याए दा फिर पाए न मुआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ किथों उपजे कह रहे कह माए सुमावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे अगम अगोचर साहेब दूसर लवे न लावे सज पूवे गुर उपदेसया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मोलिया आकाश घड़कड़ मोलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया अंत पाए जय देखो तै रहा समाए रहाओ द्वितीया मौले चार वेद सिमरत मौली स्योंक तेब शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान।

एक दिवस मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहोगे।

परम जोत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझ स शब्द विचारे, मानमुख हीन होशी मद झूठी।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद, गुणी निदान ससृढ़ का प्रभु, मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत्य कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एका, तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे, तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ताश्यों गोष्ट, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत, हर देव दर्श मन चाओ। सारग मोहल्ला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मानक ते छपाई, साखी पूत पवान रगाओ, वैष्णो नाम करत खड़ कर्मा, अंतर लोभ जुठान, संसबा की निंदा करते,

नेत्र ध्यान लाओ, श्रवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए, देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर, तोड़ न कथु जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई, क्या गुण कौरी जाए, होद कृपाल दीन दयाल प्रभ, जन नानक दास दिसाए।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पूर्ण सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए।

अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रखाओ। भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम दे समुंदर सी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन का यो मन संतरे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवां मनोरथ पूरे

का दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवार महापत्ते पातक उतर हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहे दे नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रगाओ देखे नाना रूप हो रंगा अनना ही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुरदयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रगाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास बवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तै ही आयो सभी एके एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक कह ही प्रेम मांगे आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबंग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लाग सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना सारग महला पंजवा मेरे मन चीत आए प्रेरंगा बिसरो तन।

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपुरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहु के पूर्ण जाके सुख हरी रघाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंधकना वड समरत सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा

कैल न चोरी, अंधकूप में पतित होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी।

पंजवा जाकी राम नाम लिव लागी सजन सुरदा सुहेला सहजे तो कहिए बड़भागी रगाओ रहत विकार अल्प माया ते अंग बुद्ध बिख त्यागी दर्श प्यास आस एक की टेक हिये प्रेपागी अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठगाना।

निर्वैरे संग वैर रचावे, हर दरगे ओहारे। आद जुगात प्रभु की वडियाई, जन की पैज सवारे। निरपो पय सगल पो मिटिया, चरण कमल आधारे। गुर के बचन जप्यो नाओ नानक, प्रगट पयो संसार। सारग मुहला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप। ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई, देख जीवा प्रताप रखाओ। गुर उपदेश साध की संगत, बिन सो सगल संताप। मित्र सत्तर पेग समत बिचार्यो, सगल सुमपाखन जाप। तरत बुझी शीतल आगाने, सुन अनहद विषम पय विषमाद। अंध पया नानक मन साचा, पूर्ण पूरे नाद।

की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्व फला दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया, सारग महला पंजवां, सिमरत नाम प्राण गद पावे, मिटे कलेस त्रास सब नस, साध संग हित लावे रहाओ, हर घर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अवमान काम क्रुद निंदा, बाज देव रंग लावे, दामोदर दयाल आराध हो, गोविंद करत सुहावे, कहो नानक सब की होए रेना, हर घर दर्श सुम

रघाव जाके सूद परो ए जनता किस प्रभु का जस गाव हो। सेमर ठाकुर जिन सब खज दीना आन कहां पै जाओ सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे, बिश

पांच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरनी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय फरनी मन बांचित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम

छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सातन वंजो सातनक संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन

प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रभ मेरा साध संग तन माल। सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

चितवो वा अवसर मन माहे होए एकत्र मिलो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रखाओ बिन घर भजन जेते काम करिए तेते बिरते जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो जिस बिन दूसर नाहे जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछुए लाहे चरण कल नानक मन बेदेओ चरण संग सवाहे सार्ग मुहला पनवा मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रगाओ साजन मीत सखाहर मेरे गुण गोपाल कर राया बिसर न जाई निमक हृदय ते पूरे गुरु मिलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत बस जाके एकाले पूर्ण परमेश्वर पौनी।

पूर्ण होत न कतहु बाते अंत प्रति हार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

पेघ दयाल अंध सुख पूरन हार रस रप्यो कुमारो रघाव निर्मल पै उजल जस गावत बौर न होवत कारो चरण कम से डोरी राची भेट्यो पुरख अपारो कर गए लीने सर्बस दीने दीपक पयो उजारो नानक नाम रसक बैरागी उले समूहा तारो तारग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे प्या गोविंद जीन को दाता माया संग लपटा हे रघाव नाम सार चले अन मार्ग नरक कोर में पाहे अनक सजाई गणतन आवे गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते

काम क्रोध निंदा पर हरिय काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम, जा कर हृदय वसे पए भंजन ते जा।

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो, सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम।

टिकन न पावे एब दे देखी आखी संता बिनते कोई न छड़या संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तय मोह बिन संता किने न लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारग मोहल्ला पनवा मायरी काटी जमकी पास हर घर जबत सब सुख पाए बीते ग्रस्त उदास रखाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी द्वितीया आस मां उद्यान अटवी ते काढ़े मार्ग संत कहो देखत दर्श पाप सब नासे हर नानक रतन लहो सारग मोहल्ला पनवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रोचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर रगाव प्राण मान पात पेत सुत बंधप हर सर्व स्थान मोर त्रिग शरीर अष्ट विष्टा क्रिम बिन हर जानत होर पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्व ला जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिन सो आन ने होर सारग मोहल्ला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी।

गाय बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन ससदा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुमे पिछानू साग तुमे संग राखन हार तुमे जगदीस रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक छे जन दर गए माने।

काम करी सब त्याग के हो शरण परोगी। नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुख उपदेसिया नानक सेव एक हरी, सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौकरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही। काज कर्मना जात सही उन मत अंध तंद रचत, जैसे महासागर होहे उधरे हर संत दास। काट दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको, सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा, हर बिन तेरो को ना सहाई। कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ, तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई। तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लबटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई, सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लबटाही। या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रहाओ, कां को तन तान संपद का की का स्यो निहो लगाई। जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही, तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही, सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे। माया माद बिखे रस रचियो आराम सन नहीं आवे रगाओ, यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे। जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे, मितया तान साचो कर मान्यो ए विद आप अंधावे। जन नानक सोऊ जग मुक्ता राम भजन चित लावे, सारंग महला नामा मान कर कबू न हर गुण गायो। बिख्या सकतरे हो निसबासर इनू अपनो पायो रगाओ, गुर उपदेश सुनियो ने कानन परदारा लपटायो। पर निंदा कारण वो तावत समझो ने समझायो, कहां कहो मैं अपनी करनी जेबद जन्म गवायो। कहे नानक सब अवगुण मोह मैं राख लियो शरणायो, राग सारग अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओहंकार। सतगुर प्रसाद हर बिन क्यों जीवा मेरी माई, जय जगदीश तेरा जा जाचो मैं हर बिन रहन न जाई रगाओ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सबाई, श्री तरनाथ मेरा मन लीना रोजाने पीर पराई। गणत शरीर पीर गए हर बिन गुर सबदी घर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो हर से उरां समाई, ऐसी रफ्तर हो मन मेरे हर चरणी चित लाई। विषम पय गुण गाए मनोहर निरपो सहज समाई, हृदय नाम सदा तुन निचल घटे न कीमत पाई। बिन नावे सब कोई निरतन सदगुर बूझ बुझाई, प्रीतम प्राण पय सुन सजनी दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी अरंगल पई मन पाई, सहज समात सदा लिव हर स्यो जीवा हर गुण गाई। गुर के सबदरता बैरागी निरकर ताड़ी लाई, सुदरस नाम
ਮਾਰਸ ਮੀਠਾ ਨਿਰਕਰ ਤਤ ਗੁਸਾਈ ਤੈਹੀ ਮਾਨ ਜੈ ਹੀ ਤੈ ਰਾਖਿਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਸਨਕਾਦਕ ਬ੍ਰਹਿਮਾਦ ਇੰਦਰਾਦਕ

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हरिंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविद कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद खोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सकाई, सच्चा सदाता कर्म विदाता, जिस पावे थे नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद, जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे, से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत्संजम करनी कृत कमावे, आवन जान रखाई, थे दर साचे साज कमावे, जिन गुर

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवां अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैत जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जंस पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी तीनी हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई मुक्त पय सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पय कृपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मै नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपय का दाता कड़ कर पूर्ण गए अल्पता कड़ कर पूर्ण कर विस्तीर्ण जल तरंग जो रजन किया हावरस माने पोक टाणे आनन बिया कोतिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रव जाता नाग दर्श लीना।

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पात स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए

आख ना जापे आख पौड़ी, नाए सुने अमन रहसी है नामे साते आई, नाए सुने अमन तृप्ति है सब दुख गवाई, नाए सुने ना उपज नामे वड़ियाई, नामे ही सब जात पात नामे गल पाई, गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला, झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की पेदी, झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहो वरे सबताई, झूठ ना धरती झूठ ना पानी, झूठ ना पौने माए समाणी।

जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली ने आव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौन दि मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई।

जिन्ना सेव्या हर दातार पौड़ी गुरमुख हिरदे सांत है नाव उगवे आया। जब तब तीर्थ संजम करे मेरे प्रापाया हिरदा शुद्ध घर सेम दे सो है गुण गाया। मेरे हर जीव एवे पामदा गुरमुख तराया नानक गुरमुख मेलियन हर दर सो हाया। श्लोक महला पहला तनवंता एव ही कहे अवरी तन को जाओ नानक निरतान तित देन जित दिन विसरे नाओ। महला पहला सूरज चढ़े विजोग

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जय पांडे, और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाए दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्र ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तोहे गई, पछते

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन लै शब्द रखे उरतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमे पावे, आपे बगसे मेल लै आपत गवावे, मिलिया कदे ना विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे।

दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर ते टिके, होर ते प्रगट ना होए। अन्ने वस माणक पया, घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई, अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई, ता पारखियां तावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए, ता वथ लहे। नौनद पल्ले पाए, कर होंदे तान। जग भुखा मोआ, बिन सतगुर सोझी ना होए। शब्द शीतल मन तन वसे, तिथे सोग वियोग न कोए। वस्त पराई आप गर्व करे, मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर आवे जाए। महला तीजा, मन अंध पया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले न विछड़े कभू। ये आप मिले करतारे, अंतर शब्द रविया गुर पाया। सगले दुख निवारे, हर सुख दाता सदा सलाही। अंतर रखा उरतारे, मानमुख तिनकी बखीली के करे। जे सच्चे शब्द सवारे, ओना दी आप पद रखसी मेरा प्यारा। शरणागत पै गुरुद्वारे, नानक गुरमुख से सुहेले पए। मुख उजल दरबारे पौड़ी, इस्त्री पुरखे बो प्रीत। मिल मोह वधाया, पुत्र कलत्र नित वेखे। विकसे मोए माया, देश परदे तन चोराए। आण मोए पाया, अंत होए वायर विरोध। को सके ना छिड़ाया, नानक विण नावे त्रिग मोह। जित लग दुख पाया, श्लोक महला तीजा। गुरमुख अमृत नाम है, जित खादे सब भुख जाए। तिसना मूल ना होवई, नाम से मन आए। बिन नावे जे होर खाना, ते त्रोग लगे तन ताए। नानक रस कस शब्द सलाहना, आपे लए मिलाए। महला तीजा, जिया अंदर जियो शब्द है। जित सह मेलावा होए, बिन शब्दे जग अनेर है। शब्दे प्रगट होए,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर किसे ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख भुख ले जाए, जन नानक त्रिवते गाए गुण, हर दर्शन दियो सुपाए पौड़ी, गुरपूरे की दात, निध देवे चढ़े सवाइया, तो देवे आप दयाल, ना शपेश पाइया, हृदय कबल प्रगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिरशाई पाइया, नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सदगुर की वड्याई। श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुजत करनी जाए, आव छोड़ सरनाए पवे, मन ले रजाए, गुरमुख जम डांडन लग गई, होमे विच्चों जाए, नानक सेवक सोई आखिए, जे सच रहे लिवलाए, महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप होमे मेरी।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रगाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे,

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन पे नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काज न कछु है, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, अरहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां बिसासा इस पांडे का, इतन गलागे ठनका, सागल तर्म पुन फल पाव हो।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे घर स्यो ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जा आपे नजर करे हर प्रव साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हू जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, आनदन कंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुपाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध था का कर्म।

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। मलार महला पंजवा, खीर धार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, तब ओ तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मिले। माता पिता कंठ लाए राखे, आनंद सहज तब खिले।

मन बांचे सो लैसी। पिता कृपाल आग्या ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रवचा है, मोहे हिरदे बसे नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जोर आहार करे तजो सगल अंदेसा। कार्ज सगल अरंभ्यो करका, ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, भोर पया मैं प्रेम मुख पेखे।

हम एक किरत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रखाओ। ओन के संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। यो मन दे किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सो पाया बन ना सको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देव मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा, दुष्ट मोए।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संगरा मैया रस पायो नानक जाके पावनी नीकी मलार मोहल्ला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेख्यो गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक सरण दुआरे मलार मोहल्ला पंजवां बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो मिल संत नानक।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल में

अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावै, सदगुर मिले तां सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावै, निर्गुण दे

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास, जम काल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मरार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम साए साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाइए अन दिन लागे सहज ध्यान रखा।

गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सुवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना तिना विटो हो वारिया सलोक मोहला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदार अली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तेस राखो मन माहे तेसनु मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासो लेखा निबड़े बगसे सिबद भंडार ओथे हाथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

पूर्व लिखिया कमाए, हौम लिखारी तिन कौ जो हर चरणी रह लिवलाए। ज्यों जल में कामल अलिप्त है ऐसी बणत बनाए, से सुहिए सदा सोहणे जिन विचों आप गवाए। तिन सोग वियोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए। सलोक महला तीजा, नानक सो सालाई है जिस वस सब किश होए। तिसे सरेब हो प्राणियों तिस बिन अवर न कोए। गुरमुख हर प्रा मन वसे ता सदा सदा सुख होए। ऐसा मूल ना हो वई ता चिंता विच्चों जाए। जो किश होए सो सहजे होए, कहना किशु ना जाए। सच्चा साहिब मन वसे ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लैन पन्ने पाए। महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार। गुरमुख जिनी बुझया हर अमृत रखिया उर धार। हर अमृत पीवे सदा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा तार। नानक गुरमुख नदरी आ

करे ता वरते सब लोए वुठे जियां जुगत होए धरणी नूसी गार होए नानक यो जगत सब जल है जल ही ते सब कोए गुर प्रसादी को विरला बूझे सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू तनी।

उपाई मेदनी सतगुर सेवे अपना आया तिस गणी जे होमे विचों जाए ता के ही गणत गणी मन मुख मोए गुबार जो फुला मंज बणी कटे पाप असंख नावे एक कणी। सलोक महला तीजा बाबिया खसमे का मैल ना जानही मैल देख अरदास पाए अपने पाने बहुता बुल है बुलिया थाए न पाए खसम वड्डा दातार है जो इच्छे

सच्चे शब्द निहालिया। नानक नाम निदान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा बा भी है हुगम पछाणिया। गुर कै सहज सुपाए मेघ वरसते दया कर गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई सुख वस्या मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चातरक तू ना जान ही क्या तुद विच तिखा है किल पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया अमृत जल पल्ले ना पाए। नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा सुमाए। पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए साधना देव ही। एक पाला ककर पन्न शीतल जल हेव ही। एक पसम चिड़ावे अंग मैल ना तोव ही। एक जटा बिगट बिगराल कोल कर खोव ही। एक नगर फिरे दिन रात नींद ना सोव ही। एक अगन जलावे अंग आप विगोव ही। विण नावे तन शार या कह रोव ही। सोहन खसम द्वार जे सदगुर सेव ही।

से मर है जिन को देन से जाहे, नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाहे। फसल अहाड़ी एक नाम सामनी सचनाओ, मैं महदूद लखाया खसम कह दर जाए। दुनिया के दर केतड़े केते आवे जाहे, केते मंगे मंगते केते मंग मंग जाहे। महल्ला

अंधे का नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्त का नाव चौधरी, कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए, कल का यो न्याओ मोहल्ला पहला, हरणा बाजा तैसकदारा, इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात पहायन, अगे ना ही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बिना, जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, ता उपर होवे शाओ, हराज सी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहंदा पायन काओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ, जिथे जिया हो सी सार, नक्की वड्डी लाए तबार पौड़ी।

रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगया इन्हें न रखी लज इना ठगन ठग से जे

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न हुए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे।

सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जा परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना। सबल होते दुर्लभ देही, जा को सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा।

पंजवां तैन कहामन कौ कई केत है ऐसो जन बिरलोग है सेवक जो तत योग कौ बेत है रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक है एकी नेत है बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किश लेता है कहो नानक जान हर हर हर है।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

अबर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सब कड़ प्रभु निवास, प्रभु चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौ बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवां कर छेवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम निध नाम निदान हर केर, हर रंग रंग रंग अनुपेर, कहे रे मन मोहे मगनेर, नैनो देख साध दरसेर, सो पावे जिस लिखत ललेर रहाओ, सेवो साध संत चिरनेर, बांचो तूर पवित्र करेर, अड़सड़ मज्जन मैल कटेर, सा सा त्याव हो मुख नहीं मोर, किस संग न चाले लाख करोर, प्रभु जी को नाम अंत पकरोर, मनसा मार एक निरंकेर, सगल त्याग है पाओ दूजेर, कामन कहां हां गुण प्रे तेर, वर्ण सा को एक टोलेर, दर्शन प्यास बहुत मन मेर।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हों रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित प्याई है प्रवान सोई आया जब ताप संजम हर घर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बेकार बिन से मंदा।

पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आज सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक मोहल्ला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनत नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इक सिते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जान केतविद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखिया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखिया गुरभजन ते आया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकया साव कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखिया सलोक महला चौथा राम नाम राम रब रहे राम रामो राम रमीत घट घट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग जी

कर रोल, वडभागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल। सब त्याभो नर नारायण नारायण, जित चूका जम झगड़ चघोल। सरोक मखला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। मखला चौथा, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे जन नानक कढ़ चन। पौड़ी जल थल मई अल पूरनो अपरम।

गोपाल गुण प्रगट सब लोई। सलोक महला चौथा। गुरमुख मिले से सजना हर प्रपाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू, लुड़ लुड़ दर गए।

रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रद पारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी, एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गावे, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमाद हो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रव लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रव किए, सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रव राखे, जन नानक सरन।

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर घर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रखाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिने समान जद कता तद पेखीए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवा गुरनाद तुन आनंद वेद कथत सुनत मुंजना मिल संत मंडली रखाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत ते पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुत सुरत शब्द तत् बेते जब तब अखंडली ओत पोत मिल जोत नान कशु दुख ना डंडली कल्याण मोहल्ला पंजवा कौन बे ताकी कहां करो हरत ध्यान ज्ञान सहस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रखाओ बेसन महेश सिद्ध इंद्रा कैदर सरन परो काहू पै रार काहू पै सुरगा कोड़ मध्य मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाईए साधु चरण गहो कल्याण मोहल्ला पंजवा प्राण पद दयाल पुरख प्राप सके गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रखाओ नाम तारी सरन तेरी प्रभु दयाल टेक मेरी अनाद दीन आसवंत नाम स्वामी मने मंत तुझ बिना प्रभु किशु न जानु सर्व जुग में तुम पछानु हर मन बसे निसबासरो गोविंद नानक आसरो कल्याण मोहल्ला पंजवा मन तन जापिए भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सु कल्याण रखाओ सर्व कार्ज सिद्ध भय

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को थम।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग

का तन सोई, जे को जियो कहे ओ ना कहो, जम की तलबना होई। प्रभाती मोहल्ला पहला, जा के रूप ना ही जात ना ही मुख मासा, सतगुरु मिले नर।

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घाट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम इटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान। वडे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, सिद्ध गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीधा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जिस गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाई। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाड होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किल सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै, अज्ञान अंधेरा मन ते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम से लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेस, जो तिस भावे सो फल होस। ते गुर कहो हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई, ऐसा गुर पाई गे वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी।

दुख पग तरन पालन जोग सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवे संजोग रैन दिनस त्याय हर हर तजो मन के परम साध संगत हर मिले जिस है पूर्ण कर्म जन्म जन्म विखाद बिनसे राख ली ने आप मात पिता मीत पाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती महला पंजवां विपास पड़ताल।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पांच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने।

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

टूटा गांडा, जब तब संजम नाम संभाल लिया, अपने ठाकुरो नजर निहाल लिया, मंगल सुख कल्याण तसाई, जय सेवक गोपाल कुसाई, प्रसो प्रसन्न भये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग पुरता पूजा, कोट तीर्थ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय तारे, गोविंद जब सब कार्य सारे, ऊचे ते ऊंचा प्रवथान, हर जन लावे सहज ध्यान, दास दासन की बाछो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीत साजन परवासा तेरा, कर गए लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास, विपास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंग सहज प्रगासी, प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ, जय आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिवता तुलकाना, जो किश हुआ तो तेरा भाणा, जो इव बूझे सो सह समाणा, कहत कबीर केल बख गए खीणा, मन भया जग जीवन लीना, प्रभाती अलो एक मसीत बस्त है, अवर मुर्ख किस केरा, हिंदू मूर्त नाम निवासी,

और प्रसाद राग जय जावंती मोहल्ला नामा राम सिमर ए है तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है हरहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जय है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जाद आज है जय जावंती मोहल्ला नामा आराम भज जन्म सरा।

निमित्त है, प्रवृत्त माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जीव प्रतिपालक है। अनित वितंग अनित चितंग अनित आशा बहुविध प्रकारं अनित हेतंग अंग बंधंग परम माया मलनंग विकारं तिरंत जो अनेक जुषरागन न सिमरंत मलिन बुद्धिंग। हे गोविंद कर्तमया नानक पद उदाहरण साध संग में गिरंत गिर पद पातालंग जलंत दे दीप वैश्वंतर भंत अघातोयंग तुरंगं दुखंत गृह चिंता जन्म ता मरणे। अनक साधरंग न सिद्ध अते नानक अस्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन और दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविखयादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट भस्मं क्रोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत आग खंडन रिद्व संत भय पीत दूत है कर्म करत महानिर्मल है जन्म मरण रहंत श्रोता

दुर्लभं तरंग रूपं नच दुर्लभं दुर्गराजन नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वश अंबर नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बनता विलास नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेशं।

कंद मूलं बसंते समीप कहे रहे ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं शिदरं कोड़ बिघनं अपरातं केल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमं ताकत पिसरंगता सुजन है अस्तित्वं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवीयं महानगरवासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं

नरक विश्राम भोजोन्नी परमामण चेत हरण त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

भली सागत की बुरी माए। ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हरना दुबला यो हरी।

कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए। पांचो लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं त्यो तन देवे फूक। अंधा लोग ना जानई रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेचड़ी सुन हो वीर मसान। लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर। सोई फिर के तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहू न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेते हो, कहा भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान कै,

की मौज में रहो अंत और आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो कह ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुण।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

पंडित पंडित जल मुए मूख उभरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

कबीर सतगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मा।

तोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजयो ना खत फटयो, काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कूकर पौकना तरंग बिछे उठताए, करमी सतगुर पाया जिनहो लिया छिड़ाए, महला पंजवा। कबीर धरती साध की।

पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबरस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक है।

प्रसाद तोई पुरख सेवर साचा जा का एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सुबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरे नखेत्र अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद बरा ससियर सूर नाम उलस है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन काज समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर।